0: हम एक थे हम एक रहेंगे
1: சரி இப்ப சரணங்களை சொல்லுங்க பார்க்கலாம்
0: हम एक हैं
2: हम एक हैं
0: हम एक थे
2: हम एक थे
0: हम एक रहेंगे
2: हम एक रहेंगे
0: मिलकर कदम बढ़ाएंगे
2: मिलकर कदम बढ़ाएंगे
0: आगे बढ़ते जाएंगे
2: आगे बढ़ते जाएंगे
0: हमको रोक सके ना कोई
2: हमको रोक सके ना कोई
0: हम वायु का वेग हैं
2: हम वायु का वेग हैं
0: हम एक हैं हम एक थे हम एक रहेंगे
2: हम एक हैं हम एक थे हम एक रहेंगे
0: हम किसी से कम नहीं
2: हम किसी से कम नहीं
0: हमें किसी का डर नहीं
2: हमें किसी का डर नहीं
0: एक एक मिल ग्यारह होते
2: एक एक मिल ग्यारह होते
0: हम सब बड़े दिलेर हैं
2: हम सब बड़े दिलेर हैं
0: हम एक हैं हम एक थे हम एक रहेंगे
2: हम एक हैं हम एक थे हम एक रहेंगे
0: जीवन सरस बनाएंगे
2: जीवन सरस बनाएंगे
0: धन धान्य उपजाएंगे
2: धन धान्य उपजाएंगे
0: कोई मानव दुखी रहे ना
2: कोई मानव दुखी रहे ना
0: ऐसी सबकी टेर हैं
2: ऐसी सबकी टेर हैं
0: हम एक हैं हम एक थे हम एक रहेंगे
2: हम एक हैं हम एक थे हम एक रहेंगे
1: பாட்டு எழுதிட்டீங்களா இப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து பாடலாமா இது சதுஸ்ர நடையில அமைஞ்சிருக்கு